साल 2082 इस बात को लेकर कार्यक्रम का पूरा पुराना प्रखंड भाई कृषि विकास संक्रमण का क्रियाशील कृषक अधिकरण का नया गठन भाई सरकार अपने प्रचार करने इच्छुक कृषक संघ का सबसे बहुमोजिम का आवश्यक कार्यक्रम सहित यह सूचना प्रसारण भएको नीति देखिए इस दिन अर्थात 2083

अनुसूचित सात को मस्जिद की तरह पुनः रूपमा अनुमोदित गांधी प्रति समूह को प्रत्येक सदस्य दल को नागरिकता को प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि बनाए करने सिफारिश समूह पत्र को निर्णय सहित तीन पदक समूह को मासिक बैठक तथा बचत के परीक्षा के लिए वार्षिक कार्य योजना समूह

फूल आयुर्वेदिक खाना नियमित रूप में खाई जनसुल कम भरी नजुरी भर खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य हो।

0: है वो प्रॉपर्टी जाए मुझे उद्योग स्नातक जितने किसी आवश्यकता कंपनी हो प्रॉपर्टी चाहे मुझे उद्योग बाजार
1: Thank you.

0: है और नौ बिरादरी साग सब्जी फल फूल सही कम कसकर पूरा खाना ले बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना सब जगह भी बड़े समक इस संस्थान जारी करिए।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जा रही संदेश।

0: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।
1: किशोर जीवन में लागू पदार्थ को प्रभाव किशोर अवस्था भविष्य निर्माण करने समय हो। लागू पदार्थ को एक पदक को प्रयोग लत मानसिक समस्या र पढ़ाई में असर पुर्याउन सक्छ।
2: साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय करौं।
1: तनाव भए खुला कुरा गरौं। समाधान लागू पदार्थ होइन
2: लागू पदार्थ टाढा बसौं। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौं।
0: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: तिम्रो प्रश्न तिम्रा भावना अनि तिम्रा अनुभव अब भन्दै नराखौँ।
4: माया मित्रता शरीर सम्बन्ध सुरक्षा आफ्नो निर्णयका कुरा बुझौँ सुनौ अनि खुलेर कुरा गरौँ। खुलेर सुनौ खुलेर सुनाऊ।
5: बीबीसी मीडिया एक्शन को सहयोग में रेडियो जुनसाला र रेडियो पूर्वावा को प्रस्तुति।

आज देशभर में गर्जन सहित वर्षा को संभावना के स्थान में भारी वर्षा को चेतावनी सुस्तमा प्रतिवृद्धि कटार को जोखिम बजट अभाव होना नदिने मुख्यमंत्री को प्रतिबद्धता वातावरण विद्यालय को शैक्षिक योग्यता प्रावधान में त्रुटि सच्याउन माग।

जगह विस्तार संगे नीतिगत सुधार आवश्यक प्रतिनिधि सभा बैठक में भोलि चार विधेयक प्रस्तुत होते दुई मंत्री सह सांसद को प्रश्न उत्तर अदालत को आदेश सहज रूप में लिये कांग्रेस सभापति थापा को भनाई अमेरिकी राष्ट्रपति गाजाबाट सेना फिर्ता गर्ने 15 बुँदे योजना अस्वीकार एमपीएल खेल सुदूरपश्चिम क्रिकेट खेल्न इंग्ल्याण्डका जैव अनुबन्धित

0: फिर किशोरी को रखना रकम स्वामी अर्थात रफ्तार बना के पड़ा रफ्तार बना हुआ जिस जज करावे लगा तो करेगा अनुभव की कमी है वो कहे में ठहरने की जगह समस्या नहीं है रफ्तार बना हुआ से पचास लाख 22 लाख बाद ग्यारह मछली सीमा ऊपर फूल आयोजित खाना ये मित्र को खाई जब फूट कम बनी सभी खाना खाना रोजी स्वस्थ की बड़ी जो स्वस्थ बनी से खाधार हो
1: रेडियो गुरुबाबा के द्वारा जाए पदारी संदेश
0: खाना छ महीना पाँच अनिवार्य शुरू गरी अन्न केला बुझी साग सब्जी फल फूल सहित खानाले बच्चाहरूलाई तन्दुरुस्त बनाए पूरक खाना छोड दुई वर्षसम्म स्थान पाए जानेछ
1: रेडियो गुरुबाबा एफएमद्वारा जनहित जारी सन्देश
2: आफ्नै भाषा आफ्नै समावेशी रेडियो